0: चली। चली, तुमने अच्छी तरह पहचान लिया था वो विजय था?
1: मैंने ही नहीं बल्कि उसने भी मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है पीके।
0: इसका मतलब ये हुआ उसे हमारा पता चल चुका है।
1: हो सकता है कसीनो में उसका आना महज एक इत्तेफाक हो।
0: नहीं शरी, लखनऊ की यह रात याद है तुम्हें? यकीनन उसी तस्वीर के सहारे वो यहां तक पहुंचा है।
1: कोई बात नहीं पीके, बेटे को भी बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा।
0: नहीं शरी, विजय के सहारे हमें उसकी मां तक पहुंचना है, जिसे दीनानाथ ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था और विजय ने ना जाने उसे कहां छुपा रखा है।
2: क्या कुछ खो गया है?